0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा एक सिनोडल कलिसिया एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर आज अपनी चर्चा करते हुए इसका समापन करेंगे। श्रोताओं, कलिसिया के हर संदर्भ में एक सुरक्षा की संस्कृति को प्रोत्साहित करना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे समुदाय नाबालिगों और अति संवेदनशील लोगों के लिए सुरक्षित स्थल बने। हमें कलिसिया में उन संरचनाओं को तैयार करने की आवश्यकता है जो दुराचार को रोकने और गलत व्यवहार पर समय पर कार्रवाई करने वाले नियम और कानूनी प्रक्रियाओं को अमल करती हों। हमें इस क्षेत्र में निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। उन लोगों को विशेष और पर्याप्त प्रशिक्षण देने की जरूरत है जो नाबालिगों और अति संवेदनशीलों के संपर्क में रहते हैं। वे जो चुप रहते, जो कठिनाई का अनुभव करते, उन्हें हमें मदद करने की जरूरत है। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम पीड़ितों का स्वागत और सहयोग करें। हमें इसे संवेदना में करने की जरूरत है। इसके लिए हमें वृहद नम्रता की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि हम पीड़ितों के दुख से प्रभावित हों और अपने को उनके संग पेश आने में ठोस कदम लें जो उन्हें ऊपर की ओर उठने में मदद करता हो। सुरक्षा की प्रक्रिया को चाहिए कि वह निरंतर देखरेख और मूल्यांकन की स्थिति में हो। हमें पीड़ितों और बचाव किए लोगों का अति संवेदनशील ढंग से स्वागत और सहायता करने की आवश्यकता है। श्रोताओं, कलिसिया की सामाजिक शिक्षा, शांति और न्याय के लिए समर्पण, सामान्य निवास की देखरेख और अंतर सांस्कृतिक और अंतर धार्मिक वार्ता के संबंध में ईश प्रजा को और अधिक विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है, जिससे प्रेरितों की प्रेरिताई एक अधिक न्याय और करुणामय समाज के निर्माण में प्रभावकारी हो सके। जीवन और मानव अधिकारों की रक्षा, समाज को सही तरीके से व्यवस्थित करना, कार्य का सम्मान, एक सही और मददगार अर्थव्यवस्था और एक पूरी पारिस्थितिकी के लिए समर्पण उस सुसमाचार प्रेरिताई का हिस्सा है जिसे कलिसिया जीने और इतिहास में शामिल करने के लिए बुलाई गई है। श्रोताओं, चमत्कारी ढंग से मछलियों का पकड़ा जाना एक भोज के साथ समाप्त होता है। पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों को अपनी आज्ञा का पालन करने को कहते हैं। वे उन्हें जाल फेंकने और उसे तट पर खींचने को कहते हैं। यह प्रभु हैं, यद्यपि वे उनके लिए भोजन की तैयारी करते हैं और उन्हें खाने को बुलाते हैं। हम उनके लिए रोटियों और मछलियों को पाते हैं, जैसे कि उन्होंने उसे चमत्कारिक ढंग से भूखी भीड़ को खिलाने हेतु दुगुना किया। सारे के सारे उनकी उपस्थिति से अपने को आश्चर्य और विस्मित पाते हैं। यह इतना स्पष्ट था कि किसी को सवाल पूछने की जरूरत नहीं होती है। उनके संग और एक बार भोजन करना जो उनके परित्याग और नकारने के बाद होता है, वे पुनः उन्हें अपने संग एकता में बने रहने को निमंत्रण देते हैं। वे

उत्थान के उपरांत यीशु ख्रिस्त के द्वारा शिष्यों के लिए तैयार किया गया जलपान उनके स्वर्गीय भोज की एक निशानी है, जिसे हम पहले से ही शुरू पाते हैं। यद्यपि इसकी पूर्णता केवल स्वर्ग में होती है, कृपा का भोज और करुणा हम सबों के लिए पहले से ही तैयार किया गया है। कलीसिया को इस अति सुंदर घोषणा को बदलती दुनिया में प्रेरिताई स्वरूप पूरा करने की जिम्मेदारी मिली है। यूखारिस्त में येसु ख्रिस्त के शरीर और रक्त से पोषित होने के द्वारा कलीसिया इस बात का एहसास करती है कि वह दरिद्रों, परित्यक्त, हाशिए में रहने वालों, वे जो प्रेम के बारे में नहीं जानते और आशाहीन जीवन यापन करते हैं, वे जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते या स्वयं को किसी स्थापित धर्म का अंग नहीं मानते हैं, नहीं छोड़ सकती है। अपनी प्रार्थना में वह उन्हें ईश्वर के समक्ष लाती है और तदपश्चात वह उनके संग मिलन हेतु सृजनात्मकता और आत्मा से प्रेरित साहस में बाहर जाती है। कलीसिया की सिनोडालिटी इस भांति आज की दुनिया के लिए सामाजिक भविष्यवाणी बनती है, राजनैतिक और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में नए रास्तों के लिए प्रेरित करती। इसके साथ ही दुनिया के उपहारों के आदान प्रदान में उन सभी लोगों के संग सहयोग करती है जो भाईचारे और शांति में विश्वास करते हैं। श्रोताओं, सिनोडल प्रक्रिया के अनुरूप जीवन यापन करते हुए हम अपनी चेतना को नवीकृत करते हैं। जो मुक्ति हमें मिली है, हमें उसे घोषित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह वास्तविक रूप में हमें एक दूसरे से संयुक्त करती है। हम इसे जीते और इसे एक साथ साझा करते हैं। इतिहास हमें युद्ध, सत्ता के लिए होड़ और हजारों अन्याय और जुल्मों से दुखद स्वरूप को भरा हुआ दिखाता है। यद्यपि हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में हर मानव में एक सच्चे संबंध और सच्ची एकता की चाह को स्थापित करते हैं। सृष्टि स्वयं हमें एकता और दूसरों के संग चीजों को साझा करने की शिक्षा देती है, जहां हम जीवन को विभिन्न रूपों में एक दूसरे से जुड़ा पाते हैं। हर चीज एकता से उत्पन्न होती और एकता में बने रहने को अग्रसर करती है, यद्यपि यह बुराई से विकृत क्यों ना की गई हो। सिनोडालिटी का मुख्य लक्ष्य अपने में साक्ष्य देना है कि कलीसिया का बुलावा ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो प्रेम की एकता हैं, अपने को हमारे लिए प्रवाहित करते हैं, जो अपने को दुनिया के लिए प्रदान करते हैं। हम एकता को जी सकते हैं जो हमें सिनोडल रूप में चलते हुए बचाती है, जो हमारे बुलाहट के ताने बाने में बनी है, हमारे आदर्श और प्रेरिताई में, हमारे स्वयं से बाहर निकलकर हर एक से मिलने में, जिससे हम सुसमाचार की खुशी को ला सकें, जो हमारे ईश्वर के संग एकता में पूरी मानवता और सृष्टि के संग एकता में हमें बनाए रखता है। इस भांति हम इस आदान प्रदान के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम ईश्वरीय जीवन के भोज का अनुभव पहले से करते हैं, जिसे वे हम सबों के लिए प्रदान करते हैं। हम सिनोडल के परिणामों को कुमारी मरियम को अर्पित करते हैं। वे हमारी दिशा निर्देशिका हैं। कलीसिया की माता, जिन्होंने अंतिम व्यारे की कोठरी में शिष्यों को एक नए समुदाय का निर्माण करने में साथ दिया, जिससे वे अपने को पवित्र आत्मा के लिए खोल सकें। हमें शिष्यों और प्रेरितों के रूप में एक साथ चलने और एक सिनोडल कलीसिया बनने में वे मदद करें।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने हेतु गठित परम धम्म पीठे विभाग के लिए नए अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए सिस्टर अलेसांद्रा स्मारेले को विभाग के अध्यक्ष, कार्डिनल फाबियो बाजो को प्रो प्रीफेक्ट एवं मॉन्सिनियर जोसेफ बरलाश को सचिव नियुक्त किया है। तीनों नियुक्तियों की घोषणा 30 जून को हुई और ये 1 सितंबर 2026 से लागू होंगे। डॉन बोस्को की सलेशन धम बहन सिस्टर अलेसांद्रा स्मारेली 2021 से विभाग की सचिव के रूप में कार्यरत थी, जो अब अध्यक्ष के रूप में विभाग का संचालन करेंगी। वे कार्डिनल माइकल चेरनी की जगह लेंगी, जो 2022 से विभाग के प्रीफेक्ट थे। कार्डिनल फाबियो बाजो, जिनकी नियुक्ति प्रो प्रीफेक्ट के रूप में हुई है, विभाग के उप सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। अपनी नई भूमिका में कार्डिनल बाजो को लौदातो सी उच्च शिक्षा केंद्र की खास जिम्मेदारी दी गई है, जो सृष्टि की देखभाल से प्रेरित होकर समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए परम धम्म पीठ की लगातार प्रतिबद्धता को दिखाता है। वहीं मॉन्सिनियर जोसेफ बलाश, जिन्हें पोप ने समग्र मानव विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया है, विभाग में अब तक उप सचिव के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। इन नियुक्तियों के साथ समग्र मानव विकास के संचालन हेतु नई टीम पूरी हो गई है। यह वैटिकन का वह विभाग है जो न्याय एवं शांति, आप्रवासन, स्वास्थ्य देखभाल, परोपकार, सृष्टि की देखभाल और दुनिया भर में मानव गरिमा को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में कलीसिया के काम को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। रोम में कुस्तुनतुनिया के ख्रिस्ती एकता प्राधिधर्मध्यक्ष के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पोप लियो 14वें ने कहा कि युद्ध एवं ध्रुवीकरण के इस समय में सभी ख्रिस्तियों को भरोसेमंद गवाह बनने के लिए बुलाया गया है और उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि वर्ष 2033 को सभी ख्रिस्ते मिलकर मनाएंगे, जिसको प्रभु के उद्धार के 2000 साल पूरा होने की यादगारी में मनाया जाएगा। संत पेतुस एवं संत पॉलुस के महापर्व के लिए कुस्तुनतुनिया के ख्रिस्ते एकता प्राधिधर्मध्यक्ष के प्रतिनिधियों से पोप लियो 14वें ने 30 जून को रोम में मुलाकात की। इस अवसर पर पोप ने उन्हें संबोधित कर कहा, वर्ष 2033 में मुक्ति की दूसरी सहस्राब्दी का उत्सव मनाने की यात्रा दुनिया के सभी ख्रिस्त समुदायों द्वारा एक साथ की जाए और पुनर्जीवित प्रभु के गवाह बनने के वरदान एवं बुलावे को फिर से खोजा जाए। पर्व के मौके पर उनका स्वागत करते हुए एवं खुशी व्यक्त करते हुए पोप लियो ने कहा कि उनकी उपस्थिति कुस्तुनतुनिया में हमारी बहन कलीसिया और उसके चरवाहे एवं मार्गदर्शक ख्रिस्ते एकता प्राधिधर्मध्यक्ष मानने बर्थोलोमियो के बीच भ्रातृत्वपूर्ण करीबी को दिखाती है। उन्होंने कहा कि वे ख्रिस्ते एकता प्राधिधर्मध्यक्ष एवं पौत्र सिनट के सभी सदस्यों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपनी अपनी कलीसियाओं के संरक्षक संतों के त्योहारों पर पारंपरिक रूप से आने जाने का सिलसिला जारी रखने के लिए रोम में प्रतिनिधि भेजा है। उन्होंने पिछले साल फनार में संत जॉर्ज के प्राधिधर्मध्यक्ष गिरजाघर में संत अंद्रियास के त्योहार में शामिल होने की खुशी को याद किया। पोप ने ख्रिस्ते एकता प्राधिधर्मध्यक्ष बर्थोलोमियो के साथ अपनी मुलाकातों को भी खुशी से याद किया, जिससे उनकी आपसी मित्रता और गहरी हुई एवं कई मुद्दों पर विचारों को अधिक आदान प्रदान करने में मदद मिली। सबसे बढ़कर सभी ख्रिस्तों के बीच पूर्ण एकता की ओर बढ़ने की इच्छा। इस बारे में पोप ने कहा कि इज़निक में संत अंद्रियास के पर्व के एक दिन पहले नाइसिया की पहली महासभा की 1700वीं सालगिरह का उत्सव उन लोगों के बीच पहले से मौजूद मेल जोल का एक ठोस सबूत है, जो सभी के पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और जो यीशु ख्रिस्त को ईश्वर का प्रभु और पुत्र मानते हैं एवं पौत्र आत्मा में विश्वास करते हैं, जो हमें प्रेरित करते एवं हमें सच्चाई और एकता की पूर्णता की ओर ले जाते हैं। पोप लियो ने जोर देकर कहा, उस यादगार कार्यक्रम ने यह साफ कर दिया कि नाइसिन धर्मसार इस दुनियावी यात्रा का आधार एवं मार्गदर्शन करने वाला सिद्धांत होना चाहिए। युद्धों और बढ़ते ध्रुवीकरण के साथ ही सांस्कृतिक एवं सामाजिक बंटवारे वाले इस दौर में पोप ने जोर देकर कहा, उन सभी ख्रिस्तियों को जो आपस में मेल मिलाप रखते हैं और एक ही धर्म को मानते हैं, शांति की भरोसेमंद निशानी बनने के लिए बुलाया गया है, ताकि वे शांति निर्माण के अच्छे इरादे वाले सभी पुरुषों एवं महिलाओं की कोशिशों में अहम योगदान दे सकें।
अपने संबोधन के अंत में पोप ने इस दौरे के लिए साथी प्रतिनिधि एवं ख्रिस्ती एकता को बढ़ावा देने के लिए ख्रिस्ती एकता प्राधिकरण अध्यक्ष के व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए फिर से सहृदय शुक्रिया अदा किया। पोप लियो 14वें ने संत पियूस 10वें के पुरोहितों की सोसाइटी के सुपीरियर जनरल को एक पत्र भेजा है। पत्र 29 जून संत पेत्रुस एवं संत पौलुस के महापर्व के दिन एवं परमधम पीठे आदेश के बिना लेफेब्रिस्टस के धर्म अध्यक्षों के रूप में अभिषेक की घोषणा से 2 दिन पहले का है, जिसके द्वारा एक नया विभाजन उत्पन्न होगा। पोप लियो 14वें ने हाल ही में कस्तेल गंदोल्फो में पत्रकारों के साथ अपनी मुलाकात के दौरान घोषणा की थी कि उन्होंने संत पियूस 10वें के पुरोहितों की सोसाइटी से आखिरी अपील की है, जिसमें उनसे कहा है कि वे परमधम पीठे आदेश के बिना 1 जुलाई की सुबह स्विट्जरलैंड के इकोन में होने वाले 4 नए धर्म अध्यक्षों के अभिषेक के साथ आगे न बढ़ें। पोप लियो लिखते हैं, एक पिता जैसे दिल से और प्रेरित संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में प्रभु द्वारा मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी को समझते हुए मैं आपसे और आपके द्वारा संत पियूस 10वें की पुरोहित्य सोसाइटी से जुड़े धर्म अध्यक्षों, पुरोहितों, सेमिनरी छात्रों और विश्वासियों से बात करता हूँ। पोप आगे कहते हैं, इसी भावना से और ख्रिस्ते प्यार से भरकर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और पूरे दिल से आग्रह करता हूँ, कृपया वापस आ जाइए। काराकास में संत जोश पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर लुइस गार्सिया ने बताया कि वेनेजुएला में भूकंप के बाद लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पोप लियो 14वें के शब्द हम सभी के लिए प्रोत्साहन के स्रोत हैं। फादर गार्सिया लोगों को एकजुटता एवं प्रार्थना की भावना से जीने का प्रोत्साहन देते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार। आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisantpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा एक सिनोडल कलिसिया एकता सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर आज अपने चर्चा करते हुए इसका समापन करेंगे। श्रोताओं, कलिसिया के हर संदर्भ में एक सुरक्षा की संस्कृति को प्रोत्साहित करना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे समुदाय नाबालिगों और अति संवेदनशील लोगों के लिए सुरक्षित स्थल बने। हमें कलिसिया में उन संरचनाओं को तैयार करने की आवश्यकता है जो दुराचार को रोकने और गलत व्यवहार पर समय पर कार्रवाई करने वाले नियम और कानूनी प्रक्रियाओं को अमल करती हों। हमें इस क्षेत्र में निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। उन लोगों को विशेष और पर्याप्त प्रशिक्षण देने की जरूरत है जो नाबालिगों और अति संवेदनशीलों के संपर्क में रहते हैं। वे जो चुप रहते, जो कठिनाई का अनुभव करते, उन्हें हमें मदद करने की जरूरत है। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम पीड़ितों का स्वागत और सहयोग करें। हमें इससे संवेदना में करने की जरूरत है। इसके लिए हमें वृहद नम्रता की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि हम पीड़ितों के दुख से प्रभावित हों और अपने को उनके संग पेश आने में ठोस कदम लें जो उन्हें ऊपर की ओर उठने में मदद करता हो। सुरक्षा की प्रक्रिया को चाहिए कि वह निरंतर देखरेख और मूल्यांकन की स्थिति में हो। हमें पीड़ितों और बचाव किए लोगों का अति संवेदनशील ढंग से स्वागत और सहायता करने की आवश्यकता है। श्रोताओं, कलिसिया की सामाजिक शिक्षा, शांति और न्याय के लिए समर्पण, सामान्य निवास की देखरेख और अंतर सांस्कृतिक और अंतर धार्मिक वार्ता के संबंध में ईश प्रजा को और अधिक विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है, जिससे प्रेरितों की प्रेरिताई एक अधिक न्याय और करुणामय समाज के निर्माण में प्रभावकारी हो सके। जीवन और मानव अधिकारों की रक्षा, समाज को सही तरीके से व्यवस्थित करना, कार्य का सम्मान, एक सही और मददगार अर्थव्यवस्था और एक पूरी पारिस्थितिकी के लिए समर्पण उस सुसमाचार प्रेरिताई का हिस्सा है जिसे कलिसिया जीने और इतिहास में शामिल करने के लिए बुलाई गई है। श्रोताओं, चमत्कारी ढंग से मछलियों का पकड़ा जाना एक भोज के साथ समाप्त होता है। पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों को अपनी आज्ञा का पालन करने को कहते हैं। वे उन्हें जाल फेंकने और उसे तट पर खींचने को कहते हैं। यह प्रभु हैं, यद्यपि वे उनके लिए भोजन की तैयारी करते हैं और उन्हें खाने को बुलाते हैं। हम उनके लिए रोटियों और मछलियों को पाते हैं, जैसे कि उन्होंने उसे चमत्कारिक ढंग से भूखी भीड़ को खिलाने हेतु दुगुना किया। सारे के सारे उनकी उपस्थिति से अपने को आश्चर्य और विस्मित पाते हैं। यह इतना स्पष्ट था कि किसी को सवाल पूछने की जरूरत नहीं होती है। उनके संग और एक बार भोजन करना जो उनके परित्याग और नकारने के बाद होता है, वे पुनः उन्हें अपने संग एकता में बने रहने को निमंत्रण देते हैं। वे उनके ऊपर अनंत करुणा की मोहर लगाते हैं जो उन्हें भविष्य के लिए खोलता है। जिन्होंने इस पास्का में भाग लिया, यह निश्चित रूप में उनके समान था जिन्होंने पुनरुत्थान के बाद उनके संग खाया पिया। श्रोताओं, अपने शिष्यों के संग भोजन करने के द्वारा पुनर्जीवित यीशु नबी इसाइयास की निशानी को पूरा करते हैं। उन शब्दों ने सिनोडल सभा के कार्य को प्रेरित किया है। पहाड़ की चोटी पर प्रभु द्वारा तैयार किया गया एक अति स्वादिष्ट और शानदार भोज, जो सभी लोगों के लिए एकता में रहने और मेल जोल का प्रतीक है। पुनरुत्थान के उपरांत यीशु ख्रिस्त के द्वारा शिष्यों के लिए तैयार किया गया जलपान उनके स्वर्गीय भोज की एक निशानी है, जिसे हम पहले से ही शुरू पाते हैं। यद्यपि इसकी पूर्णता केवल स्वर्ग में होती है, कृपा का भोज और करुणा हम सबों के लिए पहले से ही तैयार किया गया है। कलीसिया को इस अति सुंदर घोषणा को बदलती दुनिया में प्रेरिताई स्वरूप पूरा करने की जिम्मेदारी मिली है। यूखारिस्त में येसु ख्रिस्त के शरीर और रक्त से पोषित होने के द्वारा कलीसिया इस बात का एहसास करती है कि वह दरिद्रों, परित्यक्त, हाशिए में रहने वालों, वे जो प्रेम के बारे में नहीं जानते और आशाहीन जीवन यापन करते हैं, वे जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते या स्वयं को किसी स्थापित धर्म का अंग नहीं मानते हैं, नहीं छोड़ सकती हैं। अपनी प्रार्थना में वह उन्हें ईश्वर के समक्ष लाती है और तदपश्चात वह उनके संग मिलन हेतु सृजनात्मकता और आत्मा से प्रेरित साहस में बाहर जाती है। कलीसिया की सिनोडालिटी इस भांति आज की दुनिया के लिए सामाजिक भविष्यवाणी बनती है, राजनैतिक और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में नए रास्तों के लिए प्रेरित करती, इसके साथ ही दुनिया के उपहारों के आदान प्रदान में उन सभी लोगों के संग सहयोग करती है जो भाईचारे और शांति में विश्वास करते हैं। श्रोताओं, सिनोडल प्रक्रिया के अनुरूप जीवन यापन करते हुए हम अपनी चेतना को नवीकृत करते हैं। जो मुक्ति हमें मिली है, हमें उसे घोषित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह वास्तविक रूप में हमें एक दूसरे से संयुक्त करती है। हम इसे जीते और इसे एक साथ साझा करते हैं। इतिहास हमें युद्ध, सत्ता के लिए होड़ और हजारों अन्याय और जुल्मों से दुखद स्वरूप को भरा हुआ दिखाता है। यद्यपि हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में हर मानव में एक सच्चे संबंध और सच्ची एकता की चाह को स्थापित करते हैं। सृष्टि स्वयं हमें एकता और दूसरों के संग चीजों को साझा करने की शिक्षा देती है, जहां हम जीवन को विभिन्न रूपों में एक दूसरे से जुड़ा पाते हैं। हर चीज एकता से उत्पन्न होती और एकता में बने रहने को अग्रसर करती है, यद्यपि यह बुराई से विकृत क्यों ना की गई हो। सिनोडालिटी का मुख्य लक्ष्य अपने में साक्ष्य देना है कि कलीसिया का बुलावा ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो प्रेम की एकता हैं, अपने को हमारे लिए प्रवाहित करते हैं, जो अपने को दुनिया के लिए प्रदान करते हैं। हम एकता को जी सकते हैं जो हमें सिनोडल रूप में चलते हुए बचाती है, जो हमारी बुलाहट के ताने बाने में बनी है, हमारे आदर्श और प्रेरिताई में, हमारे स्वयं से बाहर निकलकर हर एक से मिलने में, जिससे हम सुसमाचार की खुशी को ला सकें, जो हमारे ईश्वर के संग एकता में पूरी मानवता और सृष्टि के संग एकता में हमें बनाए रखता है। इस भांति हम इस आदान प्रदान के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम ईश्वरीय जीवन के भोज का अनुभव पहले से करते हैं, जिसे वे हम सबों के लिए प्रदान करते हैं। हम सिनोडल के परिणामों को कुमारी मरियम को अर्पित करते हैं। वे हमारी दिशा निर्देशिका हैं, कलीसिया की माता, जिन्होंने अंतिम व्यारी की कोठरी में शिष्यों को एक नए समुदाय का निर्माण करने में साथ दिया, जिससे वे अपने को पवित्र आत्मा के लिए खोल सकें। हमें शिष्यों और प्रेरितों के रूप में एक साथ चलने और एक सिनोडल कलीसिया बनने में वे मदद करें।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने हेतु गठित परमधम पीठे विभाग के लिए नए अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए सिस्टर अलेसांद्रा स्मारेले को विभाग के अध्यक्ष, कार्डिनल फाबियो बाजो को प्रो प्रीफेक्ट एवं मॉन्सिनियर जोसेफ बरलाश को सचिव नियुक्त किया है। तीनों नियुक्तियों की घोषणा 30 जून को हुई और ये 1 सितंबर 2026 से लागू होंगी। डॉन बोस्को की सलेशन धम्भन सिस्टर अलेसांद्रा स्मारेली 2021 से विभाग की सचिव के रूप में कार्यरत थीं, जो अब अध्यक्ष के रूप में विभाग का संचालन करेंगी। वे कार्डिनल माइकल चेरनी की जगह लेंगी, जो 2022 से विभाग के प्रीफेक्ट थे। कार्डिनल फाबियो बाजो, जिनकी नियुक्ति प्रो प्रीफेक्ट के रूप में हुई है, विभाग के उप सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। अपनी नई भूमिका में कार्डिनल बाजो को लौदातो सी उच्च शिक्षा केंद्र की खास जिम्मेदारी दी गई है, जो सृष्टि की देखभाल से प्रेरित होकर समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए परमधम पीठ की लगातार प्रतिबद्धता को दिखाता है। वहीं मॉन्सिनियर जोसेफ बलाश, जिन्हें पोप ने समग्र मानव विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया है, विभाग में अब तक उप सचिव के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। इन नियुक्तियों के साथ समग्र मानव विकास के संचालन हेतु नई टीम पूरी हो गई है। यह वैटिकन का वह विभाग है जो न्याय एवं शांति, आप्रवासन, स्वास्थ्य देखभाल, परोपकार, सृष्टि की देखभाल और दुनिया भर में मानव गरिमा को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में कलीसिया के काम को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। रोम में कुस्तुनतुनिया के ख्रिस्ती एकता प्राधिधर्माध्यक्ष के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पोप लियो 14वें ने कहा कि युद्ध एवं ध्रुवीकरण के इस समय में सभी ख्रिस्तियों को भरोसेमंद गवाह बनने के लिए बुलाया गया है, और उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि वर्ष 2033 को सभी ख्रिस्ते मिलकर मनाएंगे, जिसको प्रभु के उद्धार के 2000 साल पूरा होने की यादगारी में मनाया जाएगा। संत पेत्रुस एवं संत पौलुस के महापर्व के लिए कुस्तुनतुनिया के ख्रिस्ते एकता प्राधिधर्माध्यक्ष के प्रतिनिधियों से पोप लियो 14वें ने 30 जून को रोम में मुलाकात की। इस अवसर पर पोप ने उन्हें संबोधित कर कहा, वर्ष 2033 में मुक्ति की दूसरी सहस्राब्दी का उत्सव मनाने की यात्रा दुनिया के सभी ख्रिस्त समुदायों द्वारा एक साथ की जाए और पुनर्जीवित प्रभु के गवाह बनने के वरदान एवं बुलावे को फिर से खोजा जाए। पर्व के मौके पर उनका स्वागत करते हुए एवं खुशी व्यक्त करते हुए पोप लियो ने कहा कि उनकी उपस्थिति कुस्तुनतुनिया में हमारी बहन कलीसिया और उसके चरवाहे एवं मार्गदर्शक ख्रिस्ते एकता प्राधिधर्माध्यक्ष मानने बर्थोलोमियो के बीच भ्रातृत्वपूर्ण करीबी को दिखाती है। उन्होंने कहा कि वे ख्रिस्ते एकता प्राधिधर्माध्यक्ष एवं पौत्र सिनट के सभी सदस्यों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपनी अपनी कलीसियाओं के संरक्षक संतों के त्योहारों पर पारंपरिक रूप से आने जाने का सिलसिला जारी रखने के लिए रोम में प्रतिनिधि भेजा है। उन्होंने पिछले साल फनार में संत जॉर्ज के प्राधिधर्माध्यक्ष गिरजाघर में संत अंद्रियास के त्योहार में शामिल होने की खुशी को याद किया। पोप ने ख्रिस्ते एकता प्राधिधर्माध्यक्ष बर्थोलोमियो के साथ अपनी मुलाकातों को भी खुशी से याद किया, जिससे उनकी आपसी मित्रता और गहरी हुई एवं कई मुद्दों पर विचारों को अधिक आदान प्रदान करने में मदद मिली। सबसे बढ़कर सभी ख्रिस्तों के बीच पूर्ण एकता की ओर बढ़ने की इच्छा। इस बारे में पोप ने कहा कि इज़निक में संत अंद्रियास के पर्व के एक दिन पहले नाइसिया की पहली महासभा की 17वीं सालगिरह का उत्सव उन लोगों के बीच पहले से मौजूद मेल जोल का एक ठोस सबूत है, जो सभी के पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और जो येसु ख्रिस्त को ईश्वर का प्रभु और पुत्र मानते हैं एवं पौत्र आत्मा में विश्वास करते हैं, जो हमें प्रेरित करते एवं हमें सच्चाई और एकता की पूर्णता की ओर ले जाते हैं। पोप लियो ने जोर देकर कहा, उस यादगार कार्यक्रम ने यह साफ कर दिया कि नाइसिन धर्मसार इस दुनियावी यात्रा का आधार एवं मार्गदर्शन करने वाला सिद्धांत होना चाहिए। युद्धों और बढ़ते ध्रुवीकरण के साथ ही सांस्कृतिक एवं सामाजिक बंटवारे वाले इस दौर में पोप ने जोर देकर कहा, उन सभी ख्रिस्तियों को जो आपस में मेल मिलाप रखते हैं और एक ही धर्म को मानते हैं, शांति की भरोसेमंद निशानी बनने के लिए बुलाया गया है, ताकि वे शांति निर्माण के अच्छे इरादे वाले सभी पुरुषों एवं महिलाओं की कोशिशों में अहम योगदान दे सकें।
अपने संबोधन के अंत में पोप ने इस दौरे के लिए साथी प्रतिनिधि एवं ख्रिस्ती एकता को बढ़ावा देने के लिए ख्रिस्ती एकता प्राधिकरण अध्यक्ष के व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए फिर से सहृदय शुक्रिया अदा किया। पोप लियो 14वें ने संत पियूस 10वें के पुरोहितों की सोसाइटी के सुपीरियर जनरल को एक पत्र भेजा है। पत्र 29 जून संत पेत्रुस एवं संत पौलुस के महापर्व के दिन एवं परमधम पीठे आदेश के बिना लेफेब्रिस्टस के धर्माध्यक्षों के रूप में अभिषेक की घोषणा से 2 दिन पहले का है, जिसके द्वारा एक नया विभाजन उत्पन्न होगा। पोप लियो 14वें ने हाल ही में कस्तेल गंदोल्फो में पत्रकारों के साथ अपनी मुलाकात के दौरान घोषणा की थी कि उन्होंने संत पियूस 10वें के पुरोहितों की सोसाइटी से आखिरी अपील की है, जिसमें उनसे कहा है कि वे परमधम पीठे आदेश के बिना 1 जुलाई की सुबह स्विट्जरलैंड के इकोन में होने वाले 4 नए धर्माध्यक्षों के अभिषेक के साथ आगे न बढ़ें। पोप लियो लिखते हैं, एक पिता जैसे दिल से और प्रेरित संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में प्रभु द्वारा मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी को समझते हुए मैं आपसे और आपके द्वारा संत पियूस 10वें की पुरोहित्य सोसाइटी से जुड़े धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, सेमिनरी छात्रों और विश्वासियों से बात करता हूँ। पोप आगे कहते हैं, इसी भावना से और ख्रिस्ते प्यार से भरकर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और पूरे दिल से आग्रह करता हूँ, कृपया वापस आ जाइए। काराकास में संत जोश पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर लुइस गार्सिया ने बताया कि वेनेजुएला में भूकंप के बाद लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पोप लियो 14वें के शब्द हम सभी के लिए प्रोत्साहन के स्रोत हैं। फादर गार्सिया लोगों को एकजुटता एवं प्रार्थना की भावना से जीने का प्रोत्साहन देते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार। आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिता

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: और मृत्यु का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काफी कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे

0: की दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं,
2: मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहें।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होते हैं,
2: मतलब हम ईश्वर को दिन दिन अधिक प्यार करें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का तीसरा भेद पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है,
2: मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है,
2: मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया।

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पांचवा भेद, माता मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है।
2: मतलब हमारे बिछुड़े भाई बहने असल धर्म में फिर लौट सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नवियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर कृपा।

0: की प्रार्थना द्वारा
1: हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे,
0: क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता और पुत्र

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है असाधारण कंसिस्ट्री के समापन पर पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।
3: Cari fratelli cardinali, giungiamo adesso al termine di questi giorni con un sentimento di profonda gratitudine.
2: शनिवार 27 जून को नए सिनड हॉल से पोप लियो 14वें ने एक बड़ा भाषण दिया। वैटिकन सिटी में 26 से 27 जून 2026 को आयोजित असाधारण कंसिस्ट्री के समापन पर पोप लियो 14वें ने कार्डिनलों के प्रति आभार व्यक्त किया। कैथोलिक कलीसिया में कंसिस्ट्री वह औपचारिक सभा है जिसमें पोप और कार्डिनल मंडल के सदस्य भाग लेते हैं। इस सभा में कलीसिया से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, जैसे नए कार्डिनलों की नियुक्ति की घोषणा, कलीसिया के महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं धार्मिक मामलों पर विचार विमर्श और विशेष अवसरों पर सलाह मशविरा। विगत दिनों की कंसिस्ट्री एक असाधारण कंसिस्ट्री थी, जिसमें पोप लियो 14वें ने कलीसिया के आंतरिक जीवन पर ध्यान देने के बजाय कार्डिनलों को दुनिया को देखने और यही सवाल पूछने के लिए आमंत्रित किया। आज हम अपनी कलीसियाओं को अधिक ईमानदारी, स्वतंत्रता एवं भरोसे के साथ सुसमाचार का प्रचार करने में कैसे मदद कर सकते हैं। पोप ने अपने भाषण में उपस्थित कार्डिनलों को संबोधित करते हुए कहा, अब इन दिनों के अंत में हम अत्यंत शुक्रगुजार हैं। मैं आपको उस स्वतंत्रता, भाईचारे एवं कलीसियाई भावना के लिए धन्यवाद देता हूँ जिसके साथ आपने हमारे काम में हिस्सा लिया। मैं न सिर्फ आपके विचारों की बातें अपने साथ रखता हूँ, बल्कि उस अनुभव को भी जिससे ये संभव हुआ। इन दिनों हमने मिलकर प्रभु की इच्छा खोजी, इस यकीन के साथ कि ख्रिस्त अपनी कलीसिया में काम करना जारी रखते हैं। वे ही हमसे पहले आते, हमें एकत्रित करते, हमारे भाइयों और बहनों के माध्यम से बोलते और हमें हमारे मिशन पर ले जाते हैं। सब कुछ उन्हीं से आता है और सब कुछ उन्हीं के पास लौटता है। इसलिए इतने अलग अलग कलीसियाओं, संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के कार्डिनलों को एक दूसरे की बात सुनते एवं मिलकर यह खोजते देखना कि सुसमाचार के लिए सबसे अच्छा क्या है, मेरे लिए तसल्ली एवं उम्मीद का स्रोत रहा है।
3: Abbiamo iniziato questi giorni lasciandoci guidare dall'immagine del buon samaritano.
2: हमने इन दिनों की शुरुआत भले समारी की छवि से की थी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने घायल भाई के सामने से गुजरते हुए दया से भरकर उसकी देखभाल करता है। अब अंत में सुसमाचार की और एक छवि के साथ समाप्त करना चाहूँगा, वह है एमाउस के शिष्यों की। वे भी दुख एवं निराशा से भरी यात्रा करते हैं, लेकिन प्रभु यात्रा में उनके साथी बन जाते, उनके सवालों को सुनते, धर्म ग्रंथ की व्याख्या करते, उनके दिलों को प्रज्वलित करते और उनकी यात्रा को बदल देते हैं। संत पापा ने कहा, मुझे लगता है कि इन दिनों हमने जो अनुभव किया उसमें भी ऐसा ही अनुभव रहा।
3: Abbiamo camminato insieme, ci siamo ascoltati reciprocamente.
2: हम साथ साथ चले, हमने एक दूसरे की बात सुनी और यदि हमने प्रभु के लिए जगह बनाई तो उन्होंने हमारे दिलों में उम्मीद जगाई और अब हमें एक नए नजरिए के साथ यात्रा फिर से शुरू करने के लिए हमारी कलीसियाओं में वापस भेजते हैं। पोप ने कहा, सिनोडल यात्रा पर अंतिम चिंतन ने हमें इन दिनों में जो अनुभव हुआ है उस पर फिर से सोचने में मदद की। मुझे लगता है कि सिनोडलिटी का सवाल मुख्य रूप से यह नहीं है कि फैसला करने की ताकत किसके पास है, बल्कि अधिक गहरा सवाल है कि हम मिलकर उस वरदान की रक्षा कैसे करें जो प्रभु ने अपनी कलीसिया को सौंपी है। जब यह सवाल हमारी समझ का केंद्र बनता है तो अधिकार, साझा जिम्मेदारी और फैसलों के मुद्दे भी अपनी सही जगह पाते हैं, जो मिशन और सुसमाचार के प्रति साझा वफादारी से रोशन होते हैं। इसलिए पोप ने कहा, मैं एक बार फिर आपको सिनेट को लागू करने का सफर सौंपना चाहता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जिन कलीसियाओं की सेवा करते हैं उनमें पूरे भरोसे के साथ शामिल हों, सच्ची समझ को बढ़ावा दें और सभी को सहभागी होने के लिए प्रोत्साहित करें। यह हमारी कलीसियाओं को अधिक सुसमाचारी तरीके से बढ़ने में मदद करेगी। पोप ने कार्डिनलों से कहा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जैसा कि हमने कार्डिनल ग्रेज से सुना, कि सिनोडालिटी सिर्फ एक साधारण सभा नहीं है, ना ही काम करने का कोई तरीका या एक आध्यात्मिक तरीका है। यह मिलने जुलने से उत्पन्न होता है, सुनने से बढ़ता और आत्मपरक से परिपक्व होता है। असली सवाल यह नहीं है कि हम कितनी सभाएं आयोजित कर सकते हैं, बल्कि यह कि हमारी सभाओं में क्या सुसमाचारी सद्गुण होगी। जब हम एक दूसरे को विनम्रता और स्वतंत्रता से सुनते हैं, आत्मा के लिए जगह बनाते, तो हमारी बातचीत सिर्फ विचारों का आदान प्रदान नहीं रहती, बल्कि मन परिवर्तन की जगह बन जाती है, जहां हम प्रभु के प्रति वफादारी में एक साथ बढ़ते हैं। कंसिस्ट्री पर लौटते हुए पोप ने कहा, इन दिनों की बातचीत पर चिंतन करते हुए मैं सबसे पहले उस दृष्टिकोण को लेता हूं, जिससे आपने पहले सत्र में दुनिया को देखा। आप में से कई ने युद्ध, हिंसा, गरीबी और लोगों के जीवन में कई प्रकार के अन्याय के कारण होने वाले दुख के बारे बात की, लेकिन आपने उनके बारे में बताना बंद नहीं किया। इन दुखद घटनाओं के पीछे आपने एक और भी गहरी पीड़ा को पहचाना, अकेलापन, रिश्तों का संकट, उम्मीद का खत्म होना, एक दूसरे को भाई बहन के रूप में पहचानने में कठिनाई। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो दुनिया के जख्मों से मुंह नहीं मोड़ती, बल्कि उनकी जड़ों को खोजती है। अक्सर उनके अंदर छिपी हुई अर्थ, सच्चाई, आध्यात्मिकता और समुदाय की एक नई इच्छा को पहचानती है। आज कई लोग उम्मीद एवं सच्चे रिश्तों की तलाश कर रहे हैं। पोप ने आगे कहा, जिस तरह आपने युवाओं के बारे में बात की, उससे मैं खास रूप से प्रभावित हुआ, उनके सवालों में, लेकिन उन तकलीफों में भी जो कभी कभी उन्हें निराशा की ओर ले जाती हैं और कभी कभी आत्महत्या करने तक भी। आपने हमारे समय के सबसे गहरे घाव में से एक को पहचाना, लेकिन आपने आत्मा के काम को भी पहचाना। असलियत, सच्चे रिश्तों और अर्थ की उनकी खोज हमें याद दिलाती है कि सुसमाचार मानव के दिल की सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा करता है। उनकी और उनके परिवारों की विनम्रता से सुनना भी प्रभु के लिए कलीसिया को बदलने का तरीका है। आप में से कई लोगों ने परिवार का भी जिक्र किया। जहाँ परिवार को समर्थन और साथ मिलता है, वहाँ यह रिश्तों, एकजुटता और उम्मीद का एक स्कूल बनता है, और जहाँ इसे चोट पहुँचती या अकेला छोड़ दिया जाता, वहाँ पूरा समाज इसका परिणाम भुगतता है। संत पापा ने जानकारी देते हुए कहा, अक्टूबर में हम पूर्वी कलीसियाओं के प्रमुखों और धर्मदक्ष सम्मेलनों के अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग करेंगे, ताकि अमोरिस लेतित्सिया के बाद उठाए गए कदमों का मूल्यांकन कर सकें। कुछ परिवार भी अपने अनुभव साझा करने के लिए इसमें हिस्सा लेंगे, उनका होना जरूरी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो लोग आएंगे वे ध्यान से सुनेंगे और अपनी कलीसियाओं के परिवारों के अनुभव लेकर आएंगे। इस तरह आपने यह सुनने की कोशिश की कि दुनिया के घाव मानव के दिल के बारे में क्या बताते हैं। इसी हृदय में शांति का निर्णय भी होता है। इतिहास में प्रकट होने से पहले युद्ध हमारे भीतर जन्म लेता है, जब संदेह विश्वास की और आशा डर की जगह लेता है और दूसरे व्यक्ति को खतरा माना जाता है। लेकिन इसी हृदय में मसीह हमसे मिलते हैं, हमसे बात करते और हमें परिवर्तित कर देते हैं। एक सुलझे हुए दिल से कोमल शब्द, नए रिश्ते और लोगों तक पहुँचने में सक्षम शांति पैदा हो सकती है। दूसरे सत्र ने हमें एक और कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। मुझे ऐसा लगता है कि आपने मनिफिका हुमानितास के अंतर्ज्ञान में से एक को बड़ी स्पष्टता से समझ लिया है। युद्ध केवल राज्यों के बीच एक संघर्ष नहीं है, इसका जन्म बहुत पहले हो चुका है। सत्ता की संस्कृति से, जो हमारे सोचने के तरीके, रिश्तों का अनुभव करने, शांति का प्रयोग करने, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और यहाँ तक कि धर्म का प्रयोग करने के तरीके से भी, यदि यह संकट की जड़ है तो इसका जवाब देने के लिए सहयोग और संवाद की संस्कृति के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। इस तरह पोप ने सभी को उनकी जिम्मेदारियों के लिए शुक्रिया अदा करते हुए इस कंसिस्ट्री के परिणामों को कलीसिया की माता कुंवारी मरियम की मध्यस्थता को सपोर्ट किया, ताकि वे हमें अलग अलग चीज़ों में एकता बनाए रखना और शांति के सुसमाचार की सेवा विनम्रता, हिम्मत और उम्मीद के साथ करना सिखाएं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमने असाधारण कंसिस्ट्री के समापन पर पोप लियो 14वें का संदेश सुना। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने मोनसिन्योर लुचियो रुइस को, जो अब तक वाटिकन संचार विभाग के सचिव थे, परम धर्म पीठीय उदार सेवा विभाग का सचिव नियुक्त किया है। यह संस्था संत पापा के उदार कार्यों और मानवीय परियोजना के लिए जिम्मेदार है। 30 जून को घोषित यह नियुक्ति रोमन कुरिया के हाल ही में हुए कई बदलावों के बीच आया है। संचार विभाग और उदार सेवा विभाग दोनों को हाल ही में नए प्रीफेक्ट मिले हैं। लोकधर्मी मोनसेरात अल्वार्डो को 2 जून को संचार विभाग का प्रीफेक्ट नियुक्त किया गया और वे नवंबर में पदभार संभालेंगी, जबकि स्पेन के अगुस्टीनियन धर्माध्यक्ष लुइस मारिन डे सान मार्टिन मार्च महीने से उदार सेवा विभाग के प्रीफेक्ट हैं। 1 सितंबर से मोनसिन्योर रुइस धर्माध्यक्ष मारिन डे सान मार्टिन के साथ काम करेंगे। वे संचार विभाग के काम में तब से शामिल रहे हैं जब इसे संचार के लिए सचिवालय के नाम से जाना जाता था। संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें 27 जून 2015 को सचिव नियुक्त किया था, खासकर लैटिन अमेरिका में संचार और मीडिया के कई सालों के अनुभव के बाद, जहां उन्होंने लैटिन अमेरिकन कलीसिया के इन्फॉर्मेशन नेटवर्क के सलाहकार और ग्वादालूपे की माता मरियम प्रशिक्षण और विकास केंद्र के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। घोषणा के तुरंत बाद संचार विभाग के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मोनसिन्योर रुइस ने कहा कि वे प्रभु के पीछे चलने में खुश हैं, चाहे वह हमें कहीं भी बुलाएं। उन्होंने साथ काम करने में बिताए सालों के लिए शुक्रिया अदा किया और किसी भी मुश्किल के लिए माफी मांगी, खासकर विभाग बनाने के शुरुआती दौर में। उधर काराकास में सानहोसे पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर लुइस ग्रासिया वेनेजुएला में भूकंप के बाद लोगों को हो रही मुश्किलों के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि संत पापा लियो 14वें के शब्द हम सभी के लिए हिम्मत का एक बड़ा जरिया है। सोमवार 29 जून की सुबह पल्ली पुरोहित फादर लुइस ग्रासिया के साथ यह साक्षात्कार शुरू हो ही रही थी कि एक और तेज भूकंप आया। उन्होंने कहा, काराकास में अभी एक और झटका लगा है। वे अभी भी 24 जून के भूकंप की यादों से हिले हुए हैं, जिसमें 1400 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। फादर लुइस ने वाटिकन न्यूज को बताया, एक तरफ स्थिति सच में दिल तोड़ने वाली है, क्योंकि जैसा कि आपने न्यूज में देखा है, ला गुएरा में तबाही बहुत भयानक हो रही है। इसे 1999 की भूकंप से भी बुरा कहा जा सकता है। यहाँ काराकास में भी इसका असर बहुत ज्यादा महसूस किया गया है। कई लोगों के घर अब असुरक्षित हो गए हैं, दूसरों की जानें चली गई हैं और हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। संत पापा लियो 14वें द्वारा व्यक्त की गई प्रार्थना और एकजुटता पर विचार करते हुए फादर ग्रासिया ने कहा कि वे हम सभी के लिए हिम्मत का एक बड़ा जरिया रहे हैं। इस आपदा के कारण जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उन्होंने सच में साथ महसूस किया है और वे बहुत आभारी हैं। उधर नाइजीरिया के उत्तर पूर्व बोर्नो राज्य के लासा शहर में एक माध्यमिक स्कूल पर हथियारों से लैस हमले के बाद कम से कम 36 छात्र और स्कूल के एक कर्मचारी अपहरण कर लिए गए। खबर है कि यह हमला सोमवार सुबह हुआ जब छात्र अपनी वार्षिक परीक्षा दे रहे थे। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक 25 लड़कियां और 11 लड़के और एक कर्मचारी को अपहरण कर लिया गया, जबकि स्कूल के वाइस प्रिंसिपल समेत 8 और लोगों को छोड़ दिया गया। बोर्नो राज्य के गवर्नर बबगाना जुमुलू ने मौके पर एक प्रतिनिधि मंडल को भेजा है। उधर कतर ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोहा में हैं, लेकिन संपर्कों की प्रकृति के बारे में वाशिंगटन और तेहरान के परस्पर विरोधी बयानों के बावजूद वे ईरानी अधिकारियों से नहीं मिलेंगे। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि विशेष दूत हाल ही में हस्ताक्षरित अमेरिकी ईरान समझौता ज्ञापन की समीक्षा के लिए केवल मध्यस्थों से मिलेंगे। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि MOU के तहत जब्त की गई 6 अरब डॉलर की ईरानी संपत्ति अभी तक तेहरान को हस्तांतरित नहीं की गई है। वाशिंगटन ने दोहा वार्ता को MOU के पालन का हिस्सा बताया। ईरान ने किसी भी सीधी बातचीत की योजना से इनकार किया है। दूसरे इलाके के घटनाक्रम में हमास ने कहा कि उसका प्रतिनिधि मंडल इसराइल के साथ युद्ध विराम समझौता को फाइनल करने के लिए मंगलवार को काहिरा पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल का मिस्र के अधिकारियों से मिलने की उम्मीद है, क्योंकि नाजुक युद्ध विराम में तनाव बना हुआ है, जिसमें निरस्त्रीकरण और पुनर्निर्माण प्रावधान अभी भी बाकी है, और लेबनान में हाल ही में हस्ताक्षर किए गए फ्रेमवर्क समझौते के बावजूद सोमवार को दक्षिण में इजरायली हमले जारी रहे। लेबनान के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 2 मार्च से हुए हमलों में 4,257 लोग मारे गए हैं। उधर युद्ध, बड़े पैमाने पर विस्थापन और भूख ने सूडान को दुनिया का सबसे गंभीर मानवीय संकट बना दिया है। कल सूडानी सरकार ने पश्चिम कोर्डोफान राज्य में हैजा फैलने की घोषणा की। देश के अंदर विस्थापित लगभग 7 मिलियन लोग, 4 मिलियन से ज्यादा विदेश में शरणार्थी, 50,000 से ज्यादा मौतें, यही वह युद्ध है जिसका उन्होंने जिक्र किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हैजा से 117 मौतें और 838 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि चल रहे संघर्ष से बीमारी और फैल रही है और स्वास्थ्य सेवा पर असर पड़ रहा है। विस्थापन और असुरक्षा इलाज और मानवीय मदद पहुंचाने में रुकावट डाल रही है। यूएन एजेंसी जमीनी स्तर पर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इलाज केंद्र बढ़ा रही है, दवाइयां बांट रही है और प्रभावित समुदायों में पानी के क्लोरीनेशन और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे बचाव के उपायों को बढ़ावा दे रही है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है असाधारण कंसिस्ट्री के समापन पर पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।
3: Cari fratelli cardinali, giungiamo adesso al termine di questi giorni con un sentimento di profonda gratitudine.
2: शनिवार 27 जून को नए सिनट हॉल से पोप लियो 14वें ने एक बड़ा भाषण दिया। वैटिकन सिटी में 26 से 27 जून 2026 को आयोजित असाधारण कंसिस्ट्री के समापन पर पोप लियो 14वें ने कार्डिनलों के प्रति आभार व्यक्त किया। कैथोलिक कलीसिया में कंसिस्ट्री वह औपचारिक सभा है जिसमें पोप और कार्डिनल मंडल के सदस्य भाग लेते हैं। इस सभा में कलीसिया से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, जैसे नए कार्डिनलों की नियुक्ति की घोषणा, कलीसिया के महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं धार्मिक मामलों पर विचार विमर्श और विशेष अवसरों पर सलाह मशविरा। विगत दिनों की कंसिस्ट्री एक असाधारण कंसिस्ट्री थी जिसमें पोप लियो 14वें ने कलीसिया के आंतरिक जीवन पर ध्यान देने के बजाय कार्डिनलों को दुनिया को देखने और यही सवाल पूछने के लिए आमंत्रित किया। आज हम अपनी कलीसियाओं को अधिक ईमानदारी, स्वतंत्रता एवं भरोसे के साथ सुसमाचार का प्रचार करने में कैसे मदद कर सकते हैं? पोप ने अपने भाषण में उपस्थित कार्डिनलों को संबोधित करते हुए कहा, अब इन दिनों के अंत में हम अत्यंत शुक्रगुजार हैं। मैं आपको उस स्वतंत्रता, भाईचारे एवं कलीसियाई भावना के लिए धन्यवाद देता हूँ जिसके साथ आपने हमारे काम में हिस्सा लिया। मैं न सिर्फ आपके विचारों की बातें अपने साथ रखता हूँ, बल्कि उस अनुभव को भी जिससे ये संभव हुआ। इन दिनों हमने मिलकर प्रभु की इच्छा खोजी, इस यकीन के साथ कि ख्रिस्त अपनी कलीसिया में काम करना जारी रखते हैं।

0: वे ही हमसे पहले आते, हमें एकत्रित करते, हमारे भाइयों और बहनों के माध्यम से बोलते और हमें हमारे मिशन पर ले जाते हैं। सब कुछ उन्हीं से आता है और सब कुछ उन्हीं के पास लौटता है। इसलिए इतने अलग अलग कलीसियाओं, संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के कार्डिनलों को एक दूसरे की बात सुनते एवं मिलकर यह खोजते देखना कि सुसमाचार के लिए सबसे अच्छा क्या है, मेरे लिए तसल्ली एवं उम्मीद का स्रोत रहा है।
1: Abbiamo iniziato questi giorni lasciandoci guidare dall'immagine del buon samaritano.
0: हमने इन दिनों की शुरुआत भले समारी की छवि से की थी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने घायल भाई के सामने से गुजरते हुए दया से भरकर उसकी देखभाल करता है। अब अंत में सुसमाचार की और एक छवि के साथ समाप्त करना चाहूँगा, वह है एमाउस के शिष्यों की। वे भी दुख एवं निराशा से भरी यात्रा करते हैं, लेकिन प्रभु यात्रा में उनके साथी बन जाते, उनके सवालों को सुनते, धर्म ग्रंथ की व्याख्या करते, उनके दिलों को प्रज्वलित करते और उनकी यात्रा को बदल देते हैं। संत पापा ने कहा, मुझे लगता है कि इन दिनों हमने जो अनुभव किया उसमें भी ऐसा ही अनुभव रहा।
1: Abbiamo camminato insieme, ci siamo ascoltati reciprocamente.
0: हम साथ साथ चले, हमने एक दूसरे की बात सुनी और यदि हमने प्रभु के लिए जगह बनाई तो उन्होंने हमारे दिलों में उम्मीद जगाई और अब हमें एक नए नजरिए के साथ यात्रा फिर से शुरू करने के लिए हमारी कलीसियाओं में वापस भेजते हैं। पोप ने कहा, सिनोडल यात्रा पर अंतिम चिंतन ने हमें इन दिनों में जो अनुभव हुआ है उस पर फिर से सोचने में मदद की। मुझे लगता है कि सिनोडलिटी का सवाल मुख्य रूप से यह नहीं है कि फैसला करने की ताकत किसके पास है, बल्कि अधिक गहरा सवाल है कि हम मिलकर उस वरदान की रक्षा कैसे करें जो प्रभु ने अपनी कलीसिया को सौंपी है। जब यह सवाल हमारी समझ का केंद्र बनता है तो अधिकार, साझा जिम्मेदारी और फैसलों के मुद्दे भी अपनी सही जगह पाते हैं, जो मिशन और सुसमाचार के प्रति साझा वफादारी से रोशन होते हैं। इसलिए पोप ने कहा, मैं एक बार फिर आपको सिनेट को लागू करने का सफर सौंपना चाहता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जिन कलीसियाओं की सेवा करते हैं उनमें पूरे भरोसे के साथ शामिल हों, सच्ची समझ को बढ़ावा दें और सभी को सहभागी होने के लिए प्रोत्साहित करें। यह हमारी कलीसियाओं को अधिक सुसमाचारी तरीके से बढ़ने में मदद करेगी। पोप ने कार्डिनलों से कहा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जैसा कि हमने कार्डिनल ग्रेट से सुना कि सिनोडालिटी सिर्फ एक साधारण सभा नहीं है, ना ही काम करने का कोई तरीका या एक आध्यात्मिक तरीका है। यह मिलने जुलने से उत्पन्न होता है, सुनने से बढ़ता और आत्मपरक से परिपक्व होता है। असली सवाल यह नहीं है कि हम कितनी सभाएं आयोजित कर सकते हैं, बल्कि यह कि हमारी सभाओं में क्या सुसमाचारी सद्गुण होगी। जब हम एक दूसरे को विनम्रता और स्वतंत्रता से सुनते हैं, आत्मा के लिए जगह बनाते, तो हमारी बातचीत सिर्फ विचारों का आदान प्रदान नहीं रहती, बल्कि मन परिवर्तन की जगह बन जाती है, जहां हम प्रभु के प्रति वफादारी में एक साथ बढ़ते हैं। कंसिस्ट्री पर लौटते हुए पोप ने कहा, इन दिनों की बातचीत पर चिंतन करते हुए मैं सबसे पहले उस दृष्टिकोण को लेता हूँ जिससे आपने पहले सत्र में दुनिया को देखा। आप में से कई ने युद्ध, हिंसा, गरीबी और लोगों के जीवन में कई प्रकार के अन्याय के कारण होने वाले दुख के बारे बात की, लेकिन आपने उनके बारे में बताना बंद नहीं किया। इन दुखद घटनाओं के पीछे आपने एक और भी गहरी पीड़ा को पहचाना, अकेलापन, रिश्तों का संकट, उम्मीद का खत्म होना, एक दूसरे को भाई बहन के रूप में पहचानने में कठिनाई। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो दुनिया के जख्मों से मुंह नहीं मोड़ती, बल्कि उनकी जड़ों को खोजती है। अक्सर उनके अंदर छिपी हुई अर्थ, सच्चाई, आध्यात्मिकता और समुदाय की एक नई इच्छा को पहचानती है। आज कई लोग उम्मीद एवं सच्चे रिश्तों की तलाश कर रहे हैं। पोप ने आगे कहा, जिस तरह आपने युवाओं के बारे में बात की उससे मैं खास रूप से प्रभावित हुआ, उनके सवालों में लेकिन उन तकलीफों में भी जो कभी कभी उन्हें निराशा की ओर ले जाती हैं और कभी कभी आत्महत्या करने तक भी। आपने हमारे समय के सबसे गहरे घाव में से एक को पहचाना, लेकिन आपने आत्मा के काम को भी पहचाना। असलियत सच्चे रिश्तों और अर्थ की उनकी खोज हमें याद दिलाती है कि सुसमाचार मानव के दिल की सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा करता है। उनकी और उनके परिवारों की विनम्रता से सुनना भी प्रभु के लिए कलीसिया को बदलने का तरीका है। आप में से कई लोगों ने परिवार का भी जिक्र किया। जहाँ परिवार को समर्थन और साथ मिलता है, वहाँ यह रिश्तों, एकजुटता और उम्मीद का एक स्कूल बनता है, और जहाँ इसे चोट पहुँचती या अकेला छोड़ दिया जाता, वहाँ पूरा समाज इसका परिणाम भुगतता है। संत पापा ने जानकारी देते हुए कहा, अक्टूबर में हम पूर्वी कलीसियाओं के प्रमुखों और धर्मदक्ष सम्मेलनों के अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग करेंगे ताकि अमोरिस लेतित्सिया के बाद उठाए गए कदमों का मूल्यांकन कर सकें। कुछ परिवार भी अपने अनुभव साझा करने के लिए इसमें हिस्सा लेंगे। उनका होना जरूरी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो लोग आएंगे वे ध्यान से सुनेंगे और अपनी कलीसियाओं के परिवारों के अनुभव लेकर आएंगे। इस तरह आपने यह सुनने की कोशिश की कि दुनिया के घाव मानव के दिल के बारे में क्या बताते हैं। इसी हृदय में शांति का निर्णय भी होता है। इतिहास में प्रकट होने से पहले युद्ध हमारे भीतर जन्म लेता है, जब संदेह विश्वास की और आशा डर की जगह लेता है और दूसरे व्यक्ति को खतरा माना जाता है। लेकिन इसी हृदय में मसीह हमसे मिलते हैं, हमसे बात करते और हमें परिवर्तित कर देते हैं। एक सुलझे हुए दिल से कोमल शब्द, नए रिश्ते और लोगों तक पहुँचने में सक्षम शांति पैदा हो सकती है। दूसरे सत्र ने हमें एक और कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। मुझे ऐसा लगता है कि आपने मैनिफिका हुमानिटास के अंतर्ज्ञान में से एक को बड़ी स्पष्टता से समझ लिया है। युद्ध केवल राज्यों के बीच एक संघर्ष नहीं है, इसका जन्म बहुत पहले हो चुका है। सत्ता की संस्कृति से, जो हमारे सोचने के तरीके, रिश्तों का अनुभव करने, शांति का प्रयोग करने, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और यहाँ तक कि धर्म का प्रयोग करने के तरीके से भी, यदि यह संकट की जड़ है तो इसका जवाब देने के लिए सहयोग और संवाद की संस्कृति के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। इस तरह पोप ने सभी को उनकी जिम्मेदारियों के लिए शुक्रिया अदा करते हुए इस कंसिस्ट्री के परिणामों को कलीसिया की माता कुंवारी मरियम की मध्यस्थता को सपोर्ट किया, ताकि वे हमें अलग अलग चीज़ों में एकता बनाए रखना और शांति के सुसमाचार की सेवा विनम्रता, हिम्मत और उम्मीद के साथ करना सिखाएं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमने असाधारण कंसिस्ट्री के समापन पर पोप लियो 14वें का संदेश सुना। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने मोनसिन्योर लुचियो रुइस को, जो अब तक वाटिकन संचार विभाग के सचिव थे, परम धर्म पीठीय उदार सेवा विभाग का सचिव नियुक्त किया है। यह संस्था संत पापा के उदार कार्यों और मानवीय परियोजना के लिए जिम्मेदार है। 30 जून को घोषित यह नियुक्ति रोमन कुरिया के हाल ही में हुए कई बदलावों के बीच आया है। संचार विभाग और उदार सेवा विभाग दोनों को हाल ही में नए प्रीफेक्ट मिले हैं। लोकधर्मी मोनसेरात अल्वार्डो को 2 जून को संचार विभाग का प्रीफेक्ट नियुक्त किया गया और वे नवंबर में पदभार संभालेंगी, जबकि स्पेन के अगुस्टीनियन धर्माध्यक्ष लुइस मारिन डे सान मार्टिन मार्च महीने से उदार सेवा विभाग के प्रीफेक्ट हैं। 1 सितंबर से मोनसिन्योर रुइस धर्माध्यक्ष मारिन डे सान मार्टिन के साथ काम करेंगे। वे संचार विभाग के काम में तब से शामिल रहे हैं जब इसे संचार के लिए सचिवालय के नाम से जाना जाता था। संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें 27 जून 2015 को सचिव नियुक्त किया था, खासकर लैटिन अमेरिका में संचार और मीडिया के कई सालों के अनुभव के बाद, जहां उन्होंने लैटिन अमेरिकन कलीसिया के इन्फॉर्मेशन नेटवर्क के सलाहकार और ग्वादालूपे की माता मरियम प्रशिक्षण और विकास केंद्र के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। घोषणा के तुरंत बाद संचार विभाग के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मोनसिन्योर रुइस ने कहा कि वे प्रभु के पीछे चलने में खुश हैं, चाहे वह हमें कहीं भी बुलाएं। उन्होंने साथ काम करने में बिताए सालों के लिए शुक्रिया अदा किया और किसी भी मुश्किल के लिए माफी मांगी, खासकर विभाग बनाने के शुरुआती दौर में। उधर काराकास में सानहो से पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर लुइस ग्रासिया वेनेजुएला में भूकंप के बाद लोगों को हो रही मुश्किलों के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि संत पापा लियो 14वें के शब्द हम सभी के लिए हिम्मत का एक बड़ा जरिया है। सोमवार 29 जून की सुबह पल्ली पुरोहित फादर लुइस ग्रासिया के साथ यह साक्षात्कार शुरू हो ही रही थी कि एक और तेज भूकंप आया। उन्होंने कहा, काराकास में अभी एक और झटका लगा है। वे अभी भी 24 जून के भूकंप की यादों से हिले हुए हैं, जिसमें 1400 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। फादर लुइस ने वाटिकन न्यूज को बताया, एक तरफ स्थिति सच में दिल तोड़ने वाली है, क्योंकि जैसा कि आपने न्यूज में देखा है, ला गुएरा में तबाही बहुत भयानक हो रही है। इसे 1999 की भूकंप से भी बुरा कहा जा सकता है। यहाँ काराकास में भी इसका असर बहुत ज्यादा महसूस किया गया है। कई लोगों के घर अब असुरक्षित हो गए हैं, दूसरों की जानें चली गई हैं और हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। संत पापा लियो 14वें द्वारा व्यक्त की गई प्रार्थना और एकजुटता पर विचार करते हुए फादर ग्रासिया ने कहा कि वे हम सभी के लिए हिम्मत का एक बड़ा जरिया रहे हैं। इस आपदा के कारण जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उन्होंने सच में साथ महसूस किया है और वे बहुत आभारी हैं। उधर नाइजीरिया के उत्तर पूर्व बोर्नो राज्य के लासा शहर में एक माध्यमिक स्कूल पर हथियारों से लैस हमले के बाद कम से कम 36 छात्र और स्कूल के एक कर्मचारी अपहरण कर लिए गए। खबर है कि यह हमला सोमवार सुबह हुआ जब छात्र अपनी वार्षिक परीक्षा दे रहे थे। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक 25 लड़कियां और 11 लड़के और एक कर्मचारी को अपहरण कर लिया गया, जबकि स्कूल के वाइस प्रिंसिपल समेत 8 और लोगों को छोड़ दिया गया। बोर्नो राज्य के गवर्नर बबगाना जुमुलू ने मौके पर एक प्रतिनिधि मंडल को भेजा है। उधर कतर ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोहा में हैं, लेकिन संपर्कों की प्रकृति के बारे में वाशिंगटन और तेहरान के परस्पर विरोधी बयानों के बावजूद वे ईरानी अधिकारियों से नहीं मिलेंगे। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि विशेष दूत हाल ही में हस्ताक्षरित अमेरिकी ईरान समझौता ज्ञापन की समीक्षा के लिए केवल मध्यस्थों से मिलेंगे। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि
एमओयू के तहत जब्त की गई 6 अरब डॉलर की ईरानी संपत्ति अभी तक तेहरान को हस्तांतरित नहीं की गई है। वाशिंगटन ने दोहा वार्ता को एमओयू के पालन का हिस्सा बताया। ईरान ने किसी भी सीधी बातचीत की योजना से इनकार किया है। दूसरे इलाके के घटनाक्रम में हमास ने कहा कि उसका प्रतिनिधि मंडल इसराइल के साथ युद्ध विराम समझौता को फाइनल करने के लिए मंगलवार को काहिरा पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल का मिस्र के अधिकारियों से मिलने की उम्मीद है, क्योंकि नाजुक युद्ध विराम में तनाव बना हुआ है, जिसमें निरस्त्रीकरण और पुनर्निर्माण प्रावधान अभी भी बाकी है, और लेबनान में हाल ही में हस्ताक्षर किए गए फ्रेमवर्क समझौते के बावजूद सोमवार को दक्षिण में इजरायली हमले जारी रहे। लेबनान के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 2 मार्च से हुए हमलों में 4,257 लोग मारे गए हैं। उधर युद्ध, बड़े पैमाने पर विस्थापन और भूख ने सूडान को दुनिया का सबसे गंभीर मानवीय संकट बना दिया है। कल सूडानी सरकार ने पश्चिम कोर्डोफान राज्य में हैजा फैलने की घोषणा की। देश के अंदर विस्थापित लगभग 7 मिलियन लोग, 4 मिलियन से ज्यादा विदेश में शरणार्थी, 50,000 से ज्यादा मौतें, यही वह युद्ध है जिसका उन्होंने जिक्र किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हैजा से 117 मौतें और 838 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि चल रहे संघर्ष से बीमारी और फैल रही है और स्वास्थ्य सेवा पर असर पड़ रहा है। विस्थापन और असुरक्षा

0: इलाज और मानवीय मदद पहुंचाने में रुकावट डाल रही है। यूएन एजेंसी जमीनी स्तर पर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इलाज केंद्र बढ़ा रही है, दवाइयां बांट रही है और प्रभावित समुदायों में पानी के क्लोरीनेशन और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे बचाव के उपायों को बढ़ावा दे रही है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesanpietro.va पर जरूर जाएं।